0: ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମହାନ ହୋଇଥାଏ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ସମୟ ସକାଳ 6ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର
1: ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମେ ମୁକେଶ କୁମାର ବଲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक

सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद हुरमुज जलडमरु मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को

आकाशवाणी संबलपुर जुहार आंचलिक खबर पढ़ुचन सुप्रीति मिश्र वोटर तालिका के निर्भुल और स्वच्छ करबार लागि राज्य चलिथिबा स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर अभियान शेष खेपे पहुंची मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय नु मिलिथिबा सूचना अनुसार गलाकाल बेलबुड़ा तक राज्य 3,29,64,501 जन भोटर को परिगणना फर्म बंटा जाइछि गला 15 दिन भितरे 98.65% भोटर करनिके फन पहुंचाबार थी बूथ स्तरीय अधिकारी माने सफल हिछन इ संशोधन प्रक्रिया थी फन बाटवार आउ दाखल समय जून 28 तारीख रखा जाइछि भुवनेश्वर आयबाकाइल हेबार के थिबा मुख्यमंत्री जन अभियोग सुनानी कार्यक्रम बंद रहा से दिन सरकारी छुट्टी दिन पड़ुवान इ निष्पत्ति निया साधारण प्रशासन आउ साधारण अभियोग विभाग तरफ सूचना मिली परवर्त अभियोग सुनानी तारीख गणमाध्यम जरिए लोक जनई दिया रक्तर महत्व बाबदे लोक सचेतन करबार लागि फी बछर आजिर दिने विश्व रक्तदाता दिवस पालन करा जाउछि विश्व स्वास्थ्य संगठन आउ अंतरजातीय रेडक्रस संस्था 2005 मसियानु विश्व रक्तदाता दिवस पालन करुछि रक्त ग्रुप रा उत्पादन करथिबा डाक्टर लेंड स्टेनर को सुरता करिकि तांकर जन्मदिन के ई दिवस भाबे पालन करा जाउछि ई बछर ई दिवस रो वार्ता हेउछि मानवतार गुटे बुंदा रक्तदान करुन जीवन बंचुन ई अवसर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गुटे वार्ता थी स्वेच्छाकृत भाबे रक्तदान करिकि रक्तर आवश्यकता के पूरण करबा लागि शपथ नेबार के राज्यवासी को कहिछन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश मालिंग ए दिवस अवसर शुभेच्छा जनाबार सहित ओडिशा नो रक्तर अभाव नु कहारे जीवन हानि नाइ हेबार लागि सबे संकल्प नेबार के आह्वान दैछन एलिनो के नेकरी राज्यर चासी मान को व्यस्त नाइ हेबार लागि राजस्व विपर्य परिचालन मंत्री सुरेश पुजारी कहिछन कम वर्षा हेले बिल राज्य सरकार कर पाखे विकल्प योजना तैयार अछि जलसेचन प्रकल्प मान को प्रस्तुत करा जिबा बोली मंत्री श्री पुजारी चासी मान को आश्वासन दैछन नाकरा बालुका शिल्पी सुदर्शन पटनायक रूसिया

0: हजार
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। घर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
3: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इको सिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
2: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक

की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x @AIR

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागही ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागही ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5

0: जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार आईएमए से पास आउट 9 महिला कैडेट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब आईसीबीएम मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश, नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त, गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देश बंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization

0: हेलो
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, हेलो आकाशवाणी भवानी पटना को बहुत बहुत स्वागत। आपनको परिचय दियंतु।
1: हां, मैं राधाकांत भाई बोलले जालपाले बियापुर ब्लॉक बरगा डिस्ट्रिक्ट रो।
0: भाई केमती अछन?
1: मु भलो अछि, आपन केमती अछंती?
0: मु भी बहुत भलो अछि। बहुत दिन पर आपनको सहित कथावार्ता।
1: इडा प्रथम थार मैडम टा कॉल लागि।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया कथा। ताहले मते कोहंतु ताहले आपन को गीत सुनबा पई पसंद करबे अछि?
1: आजि गीतटे हला ओडिया कथा चित्र रो सुनना।
0: को गीतटी कहिबे?
1: मन रहिगला तुम्हारे ठारे।
0: निश्चय भाई, ए गीतटी आपन को हमें निश्चय सुनै देबु।
1: हां,
0: आउ घरे समस्ते भलो अछंती?
1: हां, समस्ते भलो अछंती।
0: आक्या, आपन कोन करंती?
1: चास काम करनडा छते छते घर के टिकिन रे बरदले।
0: हां हां, कोन चास?
1: एडा मुखले मुखला एडा चीना बादाम एडा जगा जुई लागला ना।
0: हां
1: हां, हां टोटल एडा राई माने एडा फली होइतला ना, राई माने एडा
0: नागपात्र
1: क्षमा सागर साहू मनोज पटेल वृषभ गहिर सुहल साहू करमसानी साहू चैतन्य पटेल लोकनाथ साहू लोकनाथ प्रधान और आम भवानी पटना सुनुवा समस्त श्रोता भाई बहन मान को गीत डेडिकेट है।
0: निश्चय ए कार्यक्रम माध्यम रे समस्त को हम गीत डेडिकेटेड कर दउछु। बहुत बहुत धन्यवाद कहथिबारु। नमस्कार।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटें

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: हेलो
2: हेलो
1: आज्ञा नमस्कार। हेलो आकाशवाणी को बहुत बहुत स्वागत।
2: नमस्कार
1: नमस्कार आपन को परिचय दियंतु आज्ञा।
2: मैं रेडियो लवर नारायण प्रधान भी बरमपुर बुगुड़ा जिला गंजाम रु कहतली।
1: नारायण भाई केमती अछंती?
2: बहुत बढ़िया अछि, खुश अछि। आ मु तो आइसक्रीम व्यापार करू छी, बड़ी के गरम पछि जोर सर।
1: हां ताले आपन को व्यापार त भलो चल थिबो। घरे समस्त केमती? मते कहंतु भाई को गीतटी सुनिबा पई पसंद करिवे आपण?
2: मते पसंद जे फिल्म हला मस्ती गीत देला दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम।
1: निश्चय भाई ए गीतटी आपनको आमे सुनै देबु।
2: गीतटा मु जोजी करिके मोर बन्धु कल सुनो हरे सोरा सुगरा साई सुगरा होई लोकनाथ प्रधान लोकनाथ साई आउ भर लगे सुधे सुधे छटान हन।
1: निश्चय ए कार्यक्रम माध्यम रे आमे समस्तन को गीत डेडिकेट कर दउछु भाई।
2: नमस्कार।

0: चानिया अरे चानिया मो
1: गला
0: कौन एमती गणी पकोच जे
1: अरे खबर कागज रे चारि पृष्ठ उल्टेले स्थानीय खबर कोटे दिन
0: ओहो अरे बाबा इत्ते काहे कि हमर रेडियोटा ऑन कलनी मीडियम वेवरी 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ट्ज जगे एफएम माध्यम रे 100.3 मेगाहर्ट्ज जगे बा न्यूज ऑन एआईआर एप माध्यम रे हम आकाशवाणी भवानी पटना ट्यून कर प्रत्येक दिन सकाळ 10टा बजे 10 मिनिट रु 11टा बजे 10 मिनिट जाय स्थानीय खबर आ मनपसंदर गीत को ने कार्यक्रम खो

0: मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इको

0: सिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मानसून के स्वागत का त्योहार बताया। उन्होंने कहा कि यह त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। कजाकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल की कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At the community reception reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a

की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ପ୍ରଚାର କଲୁ କେତୋଟି ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଗୋଟାଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଓ ପରେ ପରେ ଶୁଣିବେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

0: ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की संगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Bharat Innovates in Nice, France in a short while from now alongside French President Emmanuel Macron. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation will bring together more than 120 Indian startups, global investors, technology leaders and entrepreneurs, showcasing India's rapidly expanding innovation ecosystem. Later in the day, Prime Minister Modi and President Macron will hold bilateral talks to review progress in the India-France Special Global Strategic Partnership and discuss key regional and global issues. Prime Minister Modi yesterday reached Nice in France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. Prime Minister Narendra Modi says India has worked to make quality healthcare more affordable and accessible over the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the nation feels proud when it is known as the country with the world's largest healthcare program, that is Ayushman Bharat, which provides top quality healthcare to the most vulnerable people. He said efforts like PM Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana have made medicines affordable. The White House has said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world's leaders during next week's G7 summit in France. A senior administrative official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. In Jharkhand, 7 people, including 3 women and a 10-year-old boy, have died in separate lightning strike incidents across the state over the past 24 hours. Police said 2 people lost their lives in Ranchi and 2 people died in Garhwa district. The other fatalities were reported from Chatra, Giridih and Saraikela Kharsama districts. Authorities have sent the bodies for post-mortem examination. Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave,

0: fought 1-0 victory over Haiti in their Group C opener in Massachusetts. With this, Scotland ended a 28-year wait for a World Cup victory. And in ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch rivals Pakistan in a Group A fixture at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. India time. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France, to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France special global strategic partnership will be held later today. 7 people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in the next 2 to 3 days. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप वैश्विक निवेशक प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे
2: कार्यक्रम में नवाचार उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा
3: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा लुचनिका एंसेंबल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं दोपहर समाचार में

आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे।
आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 435,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि

0: दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया।

0: है ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में पांच बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एतेबेल जाए आपण माने कार्यक्रम सुनुथिले रिले करी प्रचार करुथिलो आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी कटक। आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारे टिके परे।
2: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थितिरे
3: गारु सहर जाए सबु स्थानरे
2: आबाल वृद्ध वनिता समस्तंक पाई
3: जुआंग और सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
2: केवल आकाशवाणी।

0: ପ୍ରଚାର କଲୁ କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାହ୍ନ 3 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
3: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर।
2: आज आकाशवाणी न्यूज के जिन मेहमान शख्सियत के साथ हम बातचीत करेंगे वो हैं एक वन ऑफ द एमिनेंट राइटर्स, ऑथर्स और एक एकेडमिक रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। इनका बहुत तकरीबन 35 साल का जो वक्त है उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एज ए सीनियर एकेडमिक हैंडलिंग डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी हैंडलिंग डिपार्टमेंट द एक्सपर्टीज इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ही हैज बीन द एकेडमिक इन इंग्लिश कश्मीर यूनिवर्सिटी से एज सीनियर मोस्ट टीचर रिटायर होने के बाद। इसके साथ साथ वो उनका जो करियर रहा है, उनका जो प्रेजेंस रही है ऑन द लिटरेरी एजुकेशनल लैंडस्केप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रोफेसर शफी शौक साहब एक बड़ा ऐसा नाम है जिनका नाम सामने आते ही स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं, लिटरेचर से वाबस्ता जो लोग हैं वो बहुत ही अदब और एहतराम के साथ विद ऑल रेस्पेक्ट लव फॉर प्रोफेसर शफी शौक साहब। तो आज हमारे स्टूडियो में हम उनसे बातचीत करेंगे। प्रोफेसर शौक साहब, हम मुख्तसरन हमारे जो लिसनर्स हैं हम आपकी जुबान से ही जानना चाहेंगे कि आप जिंदगी का सफर, एजुकेशन का सफर किस तरह से चला, यहाँ इस लैंडस्केप में आप एक ही बहुत ही आला मकाम पे आ गए, पद्मश्री अवार्डी आप हैं, इसको आप कैसे हमारे सामीन, हमारे लिसनर्स को उन तक पहुँचाना चाहेंगे?
3: मेरी जिंदगी का, मेरे अदबी सफर का और मेरी तालीम का जो सफर है वो किसी खाते मुस्तकीम से नहीं चला, एक लीनियर प्रोग्रेशन से नहीं चला, बल्कि बहुत ही जिगजैग तरीके से करूँ और अपने जो मैंने सोचा था करूँ वो नहीं हुआ, पूरी नाकामियों का एक लंबा सिलसिला है, लेकिन वही नाकामियां मेरी कामयाबी बन गई। ये अजीब इत्तेफाक है कि मसलन मैं स्कूल में एग्रीकल्चर पढ़ने गया था घर से बाहर, लेकिन फिर बीएससी बायोलॉजी में किया, बायोलॉजिकल साइंसेस में, लेकिन वहाँ नाकामी ये हुई कि मेरा अच्छा डिवीजन नहीं रहा, इसलिए मैंने साथ ही एकदम बीएससी करने के बाद अंग्रेजी में एडिशनल सब्जेक्ट्स पास किए वो 3 साल का, फिर जो ही फारग हुआ बीएससी से तो सीधे कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेजी में मैंने एडमिशन ले लिया, कोई 1973 की बात है। उससे पहले मैंने हिंदी के कुछ इम्तिहानात पास किए हैं, फारसी में कुछ इधर उधर हाथ मारा, यानी कि कहीं एक सिमत में नहीं रहा। अंग्रेजी अदब पर्टिकुलरली मेरा चॉइसेस्ट फील्ड था। मैं साइंस में तालीम हासिल करते वक्त भी अंग्रेजी के बारे में लिखता रहा, अंग्रेजी से ट्रांसलेट करता रहा या कश्मीरी से ट्रांसलेट करता रहा अंग्रेजी में, वो चीज़ें छपती रहीं, लेकिन साथ साथ बहुत सारी अजीब तरह की दिलचस्पियां रहीं। मैंने मसलन कश्मीरी जबान का पहला ग्रामर लिखा जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज में ही मैंने पहली बार एक जर्नल भी स्टार्ट किया, खुद ही अपने हाथ से कलम से लिखता था, उसका नाम था आश, और फिर लाल चौक में आकर शोपियान से अनंतनाग से लाल चौक में वो बेचता, उसे कुछ पैसे मिलते तो उसे नेक्स्ट चुमारा छपता। लेकिन अंग्रेजी डिपार्टमेंट में रहकर मेरी मुलाकात कश्मीर यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े लोगों से हुई, जिनमें प्रोफेसर रहमान राही, प्रोफेसर हामदी कश्मीरी, डॉक्टर शमसुद्दीन अहमद वगैरह वगैरह, ऐसे काजी गुलाम मोहम्मद, ऐसे लोगों से उठना बैठना रहा। मैं तो स्टूडेंट था लेकिन वो मुझे पहले ही जानते थे, क्योंकि वो मैगजीन जो मैं छापता था
2: जी,
3: उसकी वजह से वो मुझे जानते थे, और इसी रेडियो स्टेशन से मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते थे, अदबी मबास में हिस्सा लेता था, इस वजह से भी वो मुझे जानते थे, यानी कि एक तालबे इल्म की हैसियत से भी मुझे वो हौसला अफजाई मिली कि बड़े लोगों के साथ उठना बैठा रहा। और इंग्लिश डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा माहौल था, अदबी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर एम एस वॉन्ट थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, और उसके साथ साथ प्रोफेसर जे रमन साहब थे।

0: मेरे दोस्त भी थे और मेरे टीचर भी, तो उनके साथ दोस्ती का रिश्ता रहा। प्रोफेसर ए एन धर साहब जो मेरे सुपरवाइजर बन गए एमफिल और पीएचडी में, पहले जयरामन साहब थे, मैंने वहीं से एमफिल भी किया पीएचडी भी किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे कि मैंने कहा कि माय प्रोग्रेशन हैज नॉट बीन क्वाइट लीनियर इन स्ट्रेट डायरेक्शन, मैंने उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज थी ही नहीं, तो उसको कायम करने के लिए एक जद्दोजहद शुरू की कि यहाँ कश्मीरी डिपार्टमेंट होना चाहिए। उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट बन गया और जब मैं इंग्लिश में, मुझे ही ये काम सौंपा गया कि मैं उसका पहला टीचर बन गया।
1: रिपब्लिक डे 26 जनवरी को कॉन्फर किया गया पद्मश्री, व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन? क्या आपके जहन में ये था कि पद्मश्री आपको कॉन्फर किया जाएगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके लिए और भी बहुत काम करना पड़ता है पद्मश्री के लिए। इससे पहले मुझे बड़े बड़े एजाजात मिले हैं, साहित्य अकेडमी के कई अवार्ड मिले, स्टेट अवार्ड भी मिला है वगैरह वगैरह। मुझे बहुत सारे कंट्रीज का दौरा करना पड़ा, लेकिन ये जो है पद्मश्री, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था कि मुझे मिलेगा।
1: प्रोफेसर शौक साहब, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग बाय ह्यूमन बीइंग, वेयर फ्रॉम दिस मोड ऑफ एक्सप्रेशन हैज ओरिजिनेटेड? तो आप क्यों लिखते हैं, आपने क्यों लिखना शुरू किया पहले से?
0: इट इज अ मैटर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन व्हेन आई थिंक हाउ डिड आई राइट एंड व्हाई डिड आई राइट। इस एज में पहुंचकर जो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग is an expression of creativity. So creativity in itself is an instinct for every human being. Creativity bachpan se hi paida hoti hai, playfulness. Jo playfulness bachpan ki hai, banana, bigadna, todna, marodna, vagera, aur phir se naya banana, ye human instinct hai. To instinctually kuch kaam karne se ये है कि सबसे पहले जो इन्वॉल्व है पर्सन हु क्रिएट्स, ही गेट्स सम काइंड ऑफ प्लेजर इन मेकिंग एंड रिशेपिंग, एंड वही बेसिक पर्पस है। फॉर इंस्टेंस फॉर मी, वेदर आई राइट इन इंग्लिश और कश्मीरी और हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, इट गिव्स मी अ सॉर्ट ऑफ ग्रेटिफिकेशन दैट आई एम इन्वॉल्वड इन दिस काइंड ऑफ राइटिंग। आई एम द फर्स्ट रीडर ऑफ माई राइटिंग, answerable to myself. I assess my writing first of all. I become the first critic of my writing. तो ये अलग बात है, फिर मुझे कोई पढ़ने वाला मिले या ना मिले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छा लिख के गए हैं इस दुनिया से। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हर किसी शायर को, नावल निगार को, अफसाना निगार को, ड्रामा नवीस को ये देखना है कि इज इट सेटिस्फाइंग the creator's own instinct to create or not. If it does not, then it need not be made public.
1: हिस्ट्री भी इसमें है कि इंसान का पहले से इंस्टिंक्ट रहा है। क्या आपको लगता है कि एज अ राइटर किस पॉइंट ऑफ टाइम पे या इन द लाइफ आपको लोग जो पढ़ते हैं या पढ़ते थे, आपको किस तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता था?
0: सबसे पहले हम अपने आप हो जाएं लिखने से, कुछ क्रिएट करने से, तो वो बड़ी कामयाबी है। लेकिन उसके साथ ये भी है, वरना कोई छापता ही नहीं, पब्लिश भी नहीं करता। पब्लिश इसलिए करते हैं कि कोई और भी उस दुनिया में हो जो मेरे एक्सपीरियंस में शरीक हो, शामिल हो, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस कोई और समझने
1: वाला। रीडर जो आपका होगा,
0: रीडर जो होगा, या अगर कोई सिंगर हो कोई सुनने वाला हो, अगर कोई पेंटिंग करता है तो कोई देखने वाला हो। तो इसी तरह स्कल्पचर वगैरह में भी फाइन आर्ट्स हैं, उनमें यही है, क्रिएटर के अलावा कोई और इसमें शामिल हो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी को बहुत सारे रीडर्स मिले, और मिलते भी नहीं। अगर हम किसी बड़े से बड़े राइटर को भी लें, दुनिया के सबसे अजीम, बस मैं समझता हूँ मेरे लिए सबसे अजीम दुनिया का राइटर जो है वो विलियम शेक्सपियर है। सब उसका नाम जानते हैं, कोई दुनिया में है ही नहीं जो भी एजुकेटेड है जो उसका नाम,
1: विलियम शेक्सपियर को उनके नाम को नहीं जानते हैं।
0: उसके काम को कौन पढ़ा है? बहुत सारे लोग, उसके इतने दर्जनों ड्रामास हैं, उनको किसने पढ़ा है? किसी एक ने एक प्ले पढ़ा, किसी ने एक चैप्टर पढ़ा, किसी ने एक का सीन पढ़ा, कुछ डायलॉग्स याद किए, इतना ही मिल गया उसको। और शेक्सपियर को खुद क्या मिला? कुछ भी नहीं। वो ये कि अपनी जिंदगी उसने बहुत ही फायदेमंद तरीके से गुजारी, कि वो क्रिएट करता रहा और खुश होता रहा। वही खुशी जब वो एक्सटेसी मिलेगी अपने आप को, क्रिएटर को, वो बड़ा इनाम है।
1: प्रोफेसर साहब, बीइंग एन ऑथर एंड राइटर, आपको क्या लगता है जिंदगी में किस तरह का पर्पस आपको लगा? एज राइटर आपको फीलिंग है आज की तारीख में?
0: न सिर्फ ये कि मैं अपने दुख दर्द और अपने तजुर्बात का इजहार करूं, बल्कि मैं एक जमाने में रहता हूं कि

0: इसी जगह रहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने घर में रहता हूँ, फिर अपने मुल्क में रहता हूँ, अपने रियासत में रहता हूँ और इस दुनिया में रहता हूँ, 21वीं सदी में रहता हूँ। मेरा अकेलापन बिल्कुल कोई मानी नहीं रखता। मेरी एग्जिस्टेंस जो है, मेरा वजूद जो है, इज इन रिस्पॉन्स टू अदर इंडिविजुअल्स ऑफ दिस 21st century लिविंग इन सरफेस ऑफ द ग्लोब। उन सब के साथ मेरा ताल्लुक है जिनको मैं जानता नहीं, लेकिन एज राइटर, सेंसिटिव राइटर, वो आंसरेबल है, चाहे वो अमेरिका में हो, कहीं भी हो। उन सब लोगों के साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए, जो रिश्ता है अपने ज़माने और स्पेस एंड टाइम के साथ रिश्ता है, वही रिश्ता, उस रिश्ते की बिना पर हम अब एक दूसरे के दुख दर्द समझते हैं और शरीक हो जाते हैं, चाहे उसके बारे में डायरेक्टली लिखें या ना लिखें। लेकिन जब भी मैं अपनी बात करूंगा, अपनी एगनीज और अपनी पेन के बारे में लिखा, वो मेरा इंडिविजुअल पेन, मेरी इंडिविजुअल एगनी नहीं, बल्कि पूरे इस 21वीं सदी के इंसान की मुसीबत है, उसका अजाब है, उसका तन्हाईपन है, वो लोनलीनेस है जो हमको मिली 21वीं सदी में। लोनलीनेस और सेंस ऑफ एलिनेशन को जब मैं बहुत ही इंटेंसिफाई करके लिखता हूँ तो वो यूनिवर्सल खुद ही बन जाता है। आज भी अगर हम कोशिश करेंगे कि हम जानें 16वीं सदी में या 17वीं सदी में कश्मीर कैसा था, कहाँ ढूंढेंगे वो, सबके सब इस जहान फानी से चले गए हैं। तो अगर हम झलक ढूंढना चाहें, वो उस जमाने के अदब पारों में ढूंढ के निकालेंगे, कहीं कहीं कोई एक शेर, कोई एक मिसरा या कोई एक नज़म पूरी मिलेगी, तो हम खुश हो जाते हैं कि हमने कुछ पाया 17वीं सदी या 18वीं सदी के बारे में, वरना लिरिसिज्म वो कॉमन हो जाता है। इसलिए तर्जमानी बुनियादी शर्त है अदब की।
1: प्रोफेसर साहब, व्हाट हैव बीन योर फोकस्ड एरियाज, आपके इमोशंस से जुड़ी हुई जो चीजें थी, वो हाउ दोज पैरामीटर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड योर राइटिंग्स?
0: लाजमन है कि कोई राइटर इस दुनिया में किसी भी जबान में किसी भी मुल्क में लिखता हो, वो इन आइसोलेशन नहीं लिखता, अलग से होके नहीं लिखता
1: जी।
0: ही राइट्स इन रिस्पॉन्स टू अदर लिटरेचर्स ऑफ अदर लैंग्वेज आल्सो विद इन हिज ओन लैंग्वेज, विद इन हिज ओन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन इसके लिए डिलिबरेट कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं जरूरी आज के मसलन हाईफाई साइंस के बारे में लिखूं, AI के बारे में लिखूं, या आज के इंतशार के बारे में। अगर डिलिबरेटली हम कोशिश करेंगे, वो अच्छा अदब कभी नहीं बन पाता। हाँ, ज़रूर ये है कि मैंने जैसा कहा कि कोई भी शायर हो, अदीब हो, वो इन आइसोलेशन नहीं लिख पाता, ही हैज़ टू रीड अलॉट। क्योंकि अदब में दो चीज़ें शामिल हैं, एक तो उसका सब्जेक्ट मैटर और हायत। ठीक है, हमें उसका सब्जेक्ट मैटर मिलता है आसपास के लोगों से या बाय ट्रेडिशन मिलता है हमें, लेकिन हायत का ताल्लुक जहाँ तक है, मसलन अगर ये टेबल मेरे सामने है, ये वही आदमी बना सकता है जिसको मकसद के बारे में, वो एक कारपेंटर हो तो अगर कोई कारपेंटर बनना चाहे, उसको ज़रूर है उस्ताद के पास जाना पड़ेगा।
1: एग्जैक्टली
0: इसी तरह लिटरेचर में भी, अगर कोई शॉर्ट स्टोरी राइटर हो, हमारे दौर का कोई भी शॉर्ट स्टोरी राइटर हरगिज नहीं लिख पाता तब तक जब तक कम से कम उसने रशियन वगैरह लिटरेचर्स की बात ना करूं, अगर अपने भारत की ही बात करें, कम से कम प्रेमचंद को तो पढ़ना पड़ेगा, कम से कम कृष्णचंद्र को पढ़ना पड़ेगा। वरना ऐसा होता है कि आज बहुत सारे लिखना चाहते हैं कि शॉर्ट स्टोरी, लेकिन उनको मालूम ही नहीं शॉर्ट स्टोरी क्या है।
1: Professor Shok Sahab, the amount of time, I can say the hours, months, life you have spent on writings in academics, how the people around you, your family and your friends who are associated with you, you would like to give credit to anybody?
0: Yes, my wife particularly, because she has provided me ample opportunity to be busy with my own work and free from the household jobs. Also, thankful to my children.
1: So, dear listeners, with this, the special program with Padma Shri, Professor Shafi Shauk concludes here. Khuda Hafiz.
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ମୁନୀଷ ଶର୍ମା। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को

0: छाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे देओक को हराया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron are holding delegation-level talks at the historic Villa Carolus at Nice in France. The discussion between the two sides focuses on expanding the special global strategic partnership between two countries, covering defence, technology and trade. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolus. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Pallada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event

0: जहाँ वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही था। चेटिनार सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्ष दृढ़ मूल दुआ। चेटिनार सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: आम राज्य रे एबे स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम आरंभ हो जाइछि। एथिपाई 30 मई 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाई प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे। फॉर्म गुडीकु voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करि परिबे। फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहाकु बीएलएंक निकटरे दाखल करंतु एवं तांकठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु। अधिक सूचना पाई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ईसीआई नेट आप रे बुके कॉल विथ बीएलओ सुविधार उपयोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांग द्वारा जनहित रे जारी।
2: हेलो
3: हेलो
2: किए
3: आपणक सह किछि मीठा मीठा कथा किछि अनुभव किछि अनुभूतिर कथा
2: आम सह कथा हुवंतु फोन माध्यमरे प्रत्येक गुरुवार दिन 11:30 पर्यंत।
3: आम फोन नंबर हैला
4: 0667029562329562।
2: मने रखंतु 0667029562329562 एवं एहार प्रसारण सुनंतु प्रत्येक रविवार दिन 9:00 पर्यंत। हेलो
3: हेलो
2: किए
3: हेलो आकाशवाणी भवानी पाटना।

0: 1, 2, 3, 4.
1: सुनो, चाय नियो। अरे चाय नियो मो।
2: देला।
1: कौन एमिति गणी पकौछ जे?
2: अरे खबर कागजर चारि पृष्ठा उल्टेलेनी, स्थानीय खबर गोटे भी नहीं।
1: ओहो, अरे बाबा इत्ते काई की? आम रेडियोटा अन कलानी? मीडियम वेब्रे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ट्ज जोगे एफएम माध्यम रे 100.3 मेगाहर्ट्ज जोगे बा न्यूज ऑन एआईआर एप माध्यम रे आम आकाशवाणी भवानी पटना ट्यून करो प्रत्येक दिन सकाळ 10टा बजे 10 मिनिट रु 11टा बजे 10 मिनिट जाए स्थानीय खबर आ मनपसंदर गीत को नी कार्यक्रम खोला।

0: केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमणः अद्य बेंगलुरुनगरे विकसित भारत संकल्प समावेशं संबोधयन्ती अवदत् यत् कर्नाटक राज्यं यूपीए शासनकालस्य अपेक्षया पञ्चगुणितं अधिकं केन्द्रीय कर विभाजनं अवाप्तवत्। वित्तमंत्री अवदत् यत् कर विभाजनस्य माध्यमेन राज्याय 4,00,000 कोटि रूप्यकाणि प्राप्तानि। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माणाय, रेल संरचना विकासाय, बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक संपथ परियोजनायै, पुनर्नवीकरणाय, ऊर्जा परियोजनायै केन्द्रीय सहायता प्रदत्ता इति तया उक्तम्। केन्द्रीय श्रम आजीविका राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे वर्या अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति देशः अग्रे सारितः। आन्ध्रप्रदेशस्य तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मन्दिरे दर्शनानन्तरं सा अवदत् यत् एषा यात्रा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः 12 वर्षीय कार्यकालपूर्णतायाः तथा च देशस्य दीर्घकालं निरन्तरं सेवमानस्य प्रधानमन्त्रिणः स्मरणार्थं कृतास्तीति। मध्यप्रदेशस्य मुख्यमंत्री मोहन यादवः अद्य सागरमण्डले राज्यस्तरीय कार्यक्रमे लाडली बहना इति योजनायाः 37तम सहयोगांशस्य वितरणं कृतवान्। सम्पूर्णे राज्ये 15,00,000 कोट्यधिकानां महिला लाभार्थीनां वित्तकोषेषु प्रत्यक्षतया 35,18,00,000 कोट्यधिकरूप्यकाणि प्रेषितानि। केन्द्रीय स्वास्थ्यमंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व रक्तदातृदिवसस्य अवसरे जनानां स्वैच्छिक रक्तदानाय आह्वानं कृतवान्। सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रसारिते सन्देशे तेन उक्तं यत् रक्तदानं कस्यचित् व्यक्तेः जीवनरक्षणस्य तथा नूतनजीवनप्रदानस्य सर्वाधिकं प्रभावी पावनञ्च माध्यमम् अस्तीति। ओमानदेशे भारतीय दूतावासः अवदत् यत् प्रायः 14 भारतीयान् वहत् भारतीय ध्वजारोहितं यांत्रिक नौकायानं विराट 1 इत्यस्मै ओमानदेशस्य तटे यंत्रस्य विफलतायाः अनुभवः अभवदिति। सामाजिक प्रसारमाध्यमे दूतावासः सूचितवान् यत् सम्प्रति ओमान अधिकारिणां समन्वये समीपस्थैः नौकायानैः उद्धारकार्यं प्रचलतीति। अन्ते क्रीडावार्तासु। ऑस्ट्रेलिया देशः स्वस्य फीफा विश्वकप 2026 इत्यभियानस्य आरम्भं साफल्येन समारभत। स्वस्य ग्रुप डी इत्यस्य आरम्भे तुर्कीये इत्येनं देशं 2-0 पराजयत्। ह्यः स्कॉटलैंड देशः मैसाचुसेट्स नगरे ग्रुप सी इत्यस्य आरम्भे हैती देशस्य उपरि 0-1 कठिनसंघर्षे विजयं प्राप्य ग्रुप सी मध्ये अग्रस्थानं प्राप्नोत्। तस्मिन्नेव समूहे अन्यत्र 5-वारकविजेता ब्राजीलदेशः न्यूजर्सीनगरे मोरक्कोदेशेन सह 1 समाङ्कीयस्थानम् अवाप्नोत्। क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य वर्मिंघम नगरस्य एज्वास्टन नगरे ग्रुप ए क्रीडायां चिरप्रतिद्वन्दिना पाकिस्तानेन सह स्वस्य आईसीसी महिला T20 विश्वकप इति अभियानस्य आरम्भं करिष्यति। क्रीडा सायं 7 आरप्स्यते। महिला T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां भारतस्य आधिपत्यम् आसीत्। उभयपक्षयोः मध्ये क्रीडितेषु 16 स्पर्धासु 13 स्पर्धाः भारतेन विजिताः सन्ति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी फणीपाटणा आदिवासी गीत क्रम में प्रचार करुछु भत्रा संप्रदायर गीत परिवेशन करछंती मायराणी भत्रा और साथी तेबे ता पूर्वरु एही सूचना।
2: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि।
3: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीथि पई मु सेते बेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
4: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्ष रो दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: भतरा संप्रदाय लोक माने साधारणतः कोरापुट ओ नवरंगपुर जिल्ला रे बहुल भाव में बसवास करते कर्मठ और कष्ट सहिष्णु से कर्मबहुल जीवन दुख लाघव करने अनेक प्रकार नाच गीत करेकोसी कार्यर आरंभर से देवी वंदना करती। आज रिंजुड़ी कार्यक्रम आसतु शुणा भतरा मान देवी वंदना परेषण कर नवरंगपुर जिला अंतर्गत बाटागुड़ा ग्रामर मायाराणी भतरा ओ साथी।

0: I think Saurabh Das, Junior Athletic Champion 2023. Anything wrong with you? Don't worry. Try for the next time.
1: Tension nahi na. Maybe kichi better option thi to pai. Chhade obhyas. Hal better option kon? Aau kichi option rahi ban to pakhare.
2: सुभद्रा शक्ति बाजार रे एसएचजी मां मानंको हाथ तयारी हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलेट्र प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्री रो संभार हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री बेस आकर्षणीय एवं प्रतिटी मिलेट सामग्री शुद्ध ओ स्वास्थ्यप्रद जून 12 रु 16 तारीख पर्यंत ए थरर रज मौज को आहुरी उल्लास रे भरिबा को जाउ छी सुभद्रा शक्ति बाजार रो स्वतंत्र रिहाती ए थरर रज रे स्वतंत्र मजा सुभद्रा शक्ति बाजार स्ट्रेट स्कूल पाखो यूनिट 8 एसआईआरडी परिसर भुवनेश्वर

नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुंट आदित्य नारायण दास मुख्य संवाद गिनीस विश्व रिकॉर्ड रे स्थानित हला आयुष मंत्रालय तरफ आज अनुष्ठित विश्वस्तरीय ऑनलाइन योग कार्यक्रम नीट यूजी पुनः परीक्षा पई ओएसआरटीसी बस रे मागणा जातायत करिपारिबे परीक्षार्थी परीक्षार्थी तालिका प्रदान करने को जिलापाल कहुवा नहीं सूचना देले परिवहन मंत्री राज्यर पुरपल्ली उत्साह सह पालन रज महोत्सव एवं आसंता 24 घंटा मध्य कालबैशाखी नहीं विभिन्न जिला को सतर्क सूचना जारी कला आंचलिक पाणीपग केन्द्र विस्तृत संवाद आयुष मंत्रालय तरफ आज अनुष्ठित विश्वस्तरीय ऑनलाइन योग कार्यक्रम गिनीज विश्व रिकॉर्ड रे स्थानित होई छी यूट्यूब चैनल रे लाइव

0: रुकती नहीं है, ये हमने काफी टाइम तक देखा है। और स्मृति मन्ना का जब बैट चलता है वो ग्लांस करती है, जिस तरह से वो स्लाइस करती है बैट को, और उसके साथ साथ जैसे वो कवर ड्राइव लगाती है, वो रुकनी नहीं चाहिए आज के मैच में।
1: हम सब उम्मीद करते हैं कि आज भारत रुकेगा नहीं। तो विश्लेषण, आंकड़ों और उम्मीदों का ये सफर यहीं थमता है, लेकिन असली रोमांच अब शुरू होने वाला है। बर्मिंघम का मैदान तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं, और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस महामुकाबले पर टिकी हैं। भारत और पाकिस्तान की टक्कर में अब हर गेंद इतिहास लिख सकती है। वैशाली आपका, कर्नल भूपराज आपका और मूना आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू।

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: मैं आशीष चरंगू अपने साथी कमेंटेटर दर्पण तिकिया स्कोरर रजत सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का 10वां संस्करण शुरू हो चुका है 12 जून से और अब तक इस प्रतियोगिता के इस विश्व कप के 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं और आज 6वां मुकाबला है जो कि अब से थोड़ी ही देर बाद भारत और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की टीमों के बीच शुरू होने वाला है एजबेस्टन बर्मिंगम पर। और इस मैच में टॉस जीता है भारत के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने और टॉस जीतकर जैसा कि तमाम खेल के जानकारी अनुमान लगा रहे थे कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा पहले वो बल्लेबाजी करने का निर्णय लेगा इस पिच पे क्योंकि बल्लेबाजी के लिए ये उपयुक्त फिलहाल काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है और हरमनप्रीत कौर ने भी ठीक वैसे ही किया। टॉस जीतने के बाद उन्होंने बल्लेबाजी करना पसंद किया, उसका फैसला किया और जो 11 खिलाड़ी आज वो टीम में उतारे गए हैं वो हैं स्मृति मांधना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर जो कि टीम के कप्तान हैं, भारती फुलमली, ऋचा घोष टीम के विकेट कीपर, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्री चरनी और श्रियंका पाटिल। तो ये है भारतीय टीम जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो कप्तान हैं वो हैं फातिमा साना, मुनीवाली टीम के विकेट कीपर गुल फिरोजा, आयशा जफर, सायरा जबेन, नतालिया फरवेज, आलिया रियाज, रमीन शमीम, नाशरा संधू, सादिया इकबाल और तास्मिया रुबाब। तो ये है दोनों टीमों का लेखा जोखा। फिलहाल बीच मैदान पर भारत के दोनों ही प्रारंभिक बैटर्स स्मृति मांधना और शेफाली वर्मा बीच मैदान की तरफ अग्रसर होती हुई और निश्चित रूप से यहाँ पर जो खेल शायकीन हैं, खेल के जानकार हैं या खेल प्रशंसक हैं उनको यही उम्मीद होगी कि ये जोड़ी भारत को एक अच्छी शुरुआत दे। और जैसा कि हमने देखा भी है कि 2024 के विश्व कप के बाद स्मृति और शेफाली की जोड़ी ने सबसे ज़्यादा 762 रन बनाए हैं टी20 मुकाबलों में और कमोबेश वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद आज इन दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों से होगी। तो फिलहाल मैं स्वागत करूँगा अपने साथी कॉमेंटेटर

आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुचन तापस रंजन साहू जुहार पहला मुख्य खबर देशवासी निके गल बार बछरे गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा के सहजार सुलभ दरती पहुंचा जा पारिछे कहले प्रधानमंत्री आंतर्जातीय योग दिवस कार्यक्रम थी उष्णाकिर सहित भाग नेबार के आह्वान देले केन्द्र आयुष मंत्री आज ठानु मूल हेउछे तीन दिनिया कृषिभित्तिक गणपर्व रज स्वेच्छा जनले राष्ट्रपति आउ नंदपोड़ार पतरपेणी सहित आउ किछि समय उतरु मूल हेबा संबलपुर प्रसिद्ध शीतल षष्ठी जात्रा पूरा खबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहिछन गला बार बछर भितरे देशे गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा के अधिक सहजर सुलभ दरथी दिया जाई पारिछे सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट थी श्री मोदी कहिछन पृथ्वी सबुनु बड़ स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत जरिए समाजर दुर्बल श्रेणीर मानकर पासे गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा पहुँचाबाटा बहुत गर्वर विषय है श्री मोदी कहिछन भारतीय जन औषधि परियोजना पदक्षेप उषकोषार दर के कम करिछे डाक्तरी शिक्षा प्रतिष्ठान आर छात्र छात्री मानकु सीट मिलबारनु चिकित्सा शिक्षा भिल अयतका सहज आर सुलभ हो पारिछे बोली प्रधानमंत्री कहिछन सुस्थ भारत गठन लागि सरकार निरंतर चेष्टा जारी रखबे बोली प्रधानमंत्री कहिछन केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कहिछन प्रधानमंत्री को नेतृत्व थी गला बार बछरे देशर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र थी उल्लेखनीय परिवर्तन आसीछे सुस्थ नागरिक समृद्ध देश गठन थिभिल इटा सहज करवा सामाजिक गणमाध्यम जरिए श्री नड्डा कहिछन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान आरोग्य मंदिर गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा देवार दिगे बहुत बड़ भूमिका तुलेछे देशर तृणमूल स्तर न गुणात्मक शिक्षा पहुँचाबार थी इटा बहुत उपयोगी हो पारिछे आंतर्जातीय योग दिवस पालन आघनु एज गोटे विश्वस्तरीय ऑनलाइन योग कार्यक्रम हो जाए आयुष मंत्रालय मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा आउ हेबेल्डर सहयोगती होइथिबार ऑनलाइन अधिवेशन थी 130 नु एतका देश भाग नेइथिले कार्यक्रम थी जोग देकरी केन्द्र आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव कहिछन योगाभ्यास यहादे गोटे विश्वस्तरीय जन आंदोलन हो पारिछे जातिसंघ तरफ आंतर्जातीय योग दिवस के मान्यता देवाटा भारत लागि गर्वर विषय बोलकरी श्री जाधव कहिछन सार्वजनीन स्वास्थ्य और कल्याण के तहकाबार लागि योगर बढ़ुथिबार लोकप्रियता के प्रतिफलन करुछे दैनंदिन जीवन थी योग के गोटे अंश हिसाब से नेबार के केन्द्रमंत्री श्री जाधव सबको आह्वान देछन अब 21 तारीख हेबारे अंतर्जातीय योग दिवस कार्यक्रम थी उष्णाकिर सहित भाग नेबार के केन्द्रमंत्री सबको अनुरोध करवार सहित हर घर योग हर दिन योग रो संकल्प के आगे नेबार के आह्वान देछन राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभम पाटी आज कोणार्क सूर्य मंदिर सामनानु होइतबार योग शिविर ती अंशग्रहण करी कार्यक्रम रो शुभारंभ करिछन विशाखापाटनम ओम योग केन्द्र तरफ होइतबार कार्यक्रम थी राज्यपाल खुशी जाहिर करिछन ई अवसर राज्यपाल पेट्रोल और डीजेल प्रदूषण नु मुक्ति लागि सौर शक्ति ना तो बैटरी चालित गाड़ी व्यवहार करबार के लोक को परामर्श देछन गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग तरफ ओडिशा सहरांचल भड़ा नियंत्रण अधिनियम 2026 रो चिठा नियमावली बाहरी घर मालिक आउ घरे भड़ा रोथबार लोक मानकर भितरे बहुत दिनु थिबार समस्यार समाधान दिगे अधिनियम बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबा बोलिकरी आस करा जाउछे घर भड़ा व्यवस्था ती संस्कार आनबार लागि सरकार लिखित घर भड़ा चुक्ति के चिठा नियमावली थी बाध्यतामूलक करिछन निर्दिष्ट नियम आधार थी भड़ा बढ़ाबार लागि नियमावली थी उल्लेख करा जाइछि ई चिठा नियमावली बाबदे लुकर नु मतामत मगा जाइछि इति लागि 15 दिनर समय धारिज करा जाइछि लोक माने ईमेल

0: नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में धीरज बोम्मा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहत ने जीता स्वर्ण पदक। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी का मुकाबला कुरा साउ से और नीदरलैंड्स का सामना जापान से होगा। प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया ने किया बड़ा उलटफेर, एक तरफा मुकाबले में तुर्की को हराया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 32 सदस्य टीम का किया ऐलान और संडे ऑन साइकिल का 78वां संस्करण मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले से जहां दोनों टीम T20 विश्व कप में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। भारत ने इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। सैफाली वर्मा ने 5 गेंद पर 6 रन बनाए। सैफाली ने पहली गेंद पर छक्का लगाकर धमाकेदार अंदाज में विश्व कप का आगाज किया। वहीं स्मृति मांदरा ने 44 गेंद पर 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 35 गेंद पर 36 रन की सधी हुई पारी खेली और इस समय ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा क्रीज पर मौजूद हैं। वहीं भारत की पुरुष टीम और हेड कोच गौतम गंभीर ने भी महिला टीम को विश्व कप में दमदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
1: They've been playing really good cricket for the past few years now.

0: I know in T20 cricket they've come very close, but I want this time around to go all the way.
1: I'm sure that you're going to make 140 crore Indian proud. Not many people get the opportunity to represent the country at the world stage.
2: You guys have won it before and you'll do it again.
3: Here's wishing all the very best to the Indian women's cricket team.
4: I think just to take it as another game. You all have been doing so good throughout the season. I feel you have been playing amazing cricket. So just keep it simple. Trust what you have done throughout the year. And I think things will just fall into place if you keep it simple.
0: Everyone's rooting for them. They have a solid team, very well balanced team. And they'll enjoy playing in England.
3: Be fearless. Be ruthless and play to win.
0: Best wishes from all of us here in Men's Team India.
2: Our full wishes to you and all the best for the World Cup.
4: And we all are very proud of you all and we hope we win this trophy.
1: Don't be scared of making a mistake. Every time you're in doubt, take the positive route. Good luck. Bring the cup home.
5: के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड्स ने 8 विकेट पर 139 रन बनाए। 140 रन के लक्ष्य को बांग्लादेश ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर हासिल कर लिया। और अब रुख कर लेते हैं मेंस क्रिकेट की ओर। धर्मशाला में भारत ने पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में कल अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। बारिश के कारण मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। एक रिपोर्ट।
6: के खिलाफ कल हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए पहले एक दिवसीय मुकाबले को जीतकर श्रृंखला में शानदार शुरुआत की। बारिश के चलते मैच शाम 5:45 पर शुरू हुआ और 25-25 ओवरों की कटौती की गई। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम 25वें ओवर में 194 रन पर सिमट गई। मेहमान टीम ने 5वें ओवर में ही 26 के स्कोर तक 3 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज ने कप्तान हजमतुल्लाह शाहिदी के साथ चौथे विकेट के लिए 66 गेंद में 116 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 142 के स्कोर तक पहुंचाया। गुरबाज ने महज 48 गेंद में अपना नवा एक दिवसीय शतक पूरा किया। उन्होंने इस पारी में 51 गेंद का सामना करते हुए 8 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 102 रन बनाए। कुछ देर बाद टीम ने शाहिदी का विकेट भी गंवा दिया, जो 30 गेंदों में 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अजमतुल्लाह उमरजाई ने मोहम्मद नबी के साथ 6 विकेट के लिए 28 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। उमरजाई ने 16 गेंदों में 3 छक्कों के साथ 26 रन बनाए। भारतीय तरफ से डेब्यूटेंट हर्ष दुबे और गुरनूर ब्रार ने 3-3 सफलताएं हासिल की, जबकि अर्शदीप सिंह और नितिश रेड्डी ने 2-2 विकेट निकाले। डेब्यूटेंट हर्ष दुबे की गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने स्लिप में शानदार कैच पकड़कर गजनफर को 0 पर पवेलियन भेजा।
7: That is an absolute blinder if there was ever one.
6: 195 रन के लक्ष्य को भारत ने 13 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने कप्तान शुभमन गिल के साथ पहले विकेट के लिए 34 गेंद में 46 रन जोड़े। रोहित 16 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद गिल ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 43 गेंद में 70 रन जुटाकर टीम को 116 के स्कोर तक पहुंचा दिया। ईशान ने 22 गेंद में 34 रन बनाए। उनकी पारी में 1 छक्का और 3 चौके शामिल रहे। इसके बाद गिल ने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 26 रन, जबकि केएल राहुल के साथ चौथे विकेट के लिए 32 गेंद में 53 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को शानदार जीत दिलाई। गिल 66 गेंद में 2 छक्कों और 11 चौकों के साथ 84 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि केएल राहुल ने 19 गेंद में 7 बाउंड्री के साथ 39 रन की नाबाद पारी खेली। अफगानिस्तान की ओर से जियाउर रहमान शरीफी और राशिद खान ने एक एक विकेट हासिल किया। कप्तान शुभमन गिल को शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आइए सुनते हैं कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद क्या कहा।
2: Started and then they pulled the game away from us. Gurbaz batted brilliantly. The way he got his century was brilliant. But I think the way we pulled back game in the middle overs and the death overs was brilliant. Honestly, I think it was a brilliant wicket to bat on. I think as the match went on, when we were bowling, there was a little bit of grip for the spinners. When they were bowling, the ball was coming on pretty nicely.
6: Captain ne debutant ki bhi sarahana ki.
2: How Gurnoor bowled, brilliant pace and the way he was swinging the ball, the kind of lengths he bowled consistently. And even Harsh as well, you know, after I think in the first over he went for 16-17 runs and the way he pulled the game back, trusted himself.
6: श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
5: कर लेते हैं तीरंदाजी की ओर, जहां धीरज और किशोरी ने स्वर्ण पदक जीता। तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे

0: चरण में भारत के धीरज बोम्मा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहत ने रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। धीरज ने दक्षिण कोरिया के ली वू सियोक को रोमांचक फाइनल में 7-3 से हराकर अपना पहला व्यक्तिगत तीरंदाजी विश्व कप स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया।
1: Wow, 10-10, 10-9. It was marked as a 10-4 India. We're just waiting for final confirmation, but I think the high fives on the Indian side of the shooting line are evidence. And there is the confirmation. India have shot the lights out here in Antalya. They have beaten Korea by 5 set points to 1.
2: दुनिया की सबसे कामयाब तीरंदाज जोड़ियों में से एक ओ ये जिन और किम जे डेओक के खिलाफ भारतीय खिलाड़ियों ने गजब का संयम और जज्बा दिखाया। ये दक्षिण कोरिया पर भारत की दूसरी जीत है। पिछले महीने शंघाई विश्व कप में दीपिका कुमारी कुमकुम और अंकिता भगत की महिला तिकड़ी ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया की टीम को हराते हुए स्वर्ण पदक जीता था। कुमकुम और धीरज का ये विश्व कप मिक्स्ड टीम स्पर्धा का पहला स्वर्ण पदक है। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की। कोरिया ने शुरुआती 2 तीर से 16 अंक बनाए जबकि भारत ने 17 अंक हासिल किए। दूसरे प्रयास में कोरिया ने वापसी करते हुए कुल स्कोर किया 35 अंक और वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए स्कोर को पहुंचा दिया 36 पर। बाद में जांच में कुमकुम के तीर के अंक 9 से बढ़कर 10 हो गए जबकि किम के शुरुआती तीर के अंक 8 कर दिए गए जिससे भारत ने 37-36 से सेट जीत लिया और 2-0 की बढ़त बना ली। दूसरे सेट के पहले प्रयास में कोरियाई और भारतीय तीरंदाजों ने 18 अंक जुटाए। दूसरे प्रयास में कोरिया ने 18 अंक हासिल करते हुए कुल स्कोर 36 तक पहुंचा दिया। इसके बाद कुमकुम ने 9 अंक हासिल किए जिससे धीरज को सेट जीतने के लिए परफेक्ट 10 अंक की जरूरत थी। सेना के तीरंदाज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अधिकतम अंक जुटाए जिससे भारत ने दूसरे सेट 37-36 से जीत कर बढ़त 4-0 कर दी। पक्का करने के लिए भारत को सिर्फ एक सेट ड्रॉ करने की दरकार थी और तीसरे सेट के पहले प्रयास में कोरिया ने 20 जबकि भारत ने 19 अंक हासिल किए। वहीं दूसरे प्रयास में कोरिया ने 19 अंक हासिल करके स्कोर पहुंचाया 39। दबाव के बावजूद दोनों भारतीय तीरंदाजों ने 20 का स्कोर हासिल करते हुए सेट को 39-39 से ड्रॉ करके ये खिताब जीत लिया। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए मुनीष शर्मा।
0: और अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा। रात 1:30 नीदरलैंड्स और जापान आमने सामने होंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा मुकाबले में तुर्की को और स्कॉटलैंड ने हैती को हराया। सुनते हैं इन मुकाबलों पर खास रिपोर्ट।
3: में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब ऑस्ट्रेलिया के युवा गोलकीपर पैट्रिक बिच ने अपने इंटरनेशनल डेब्यू पर शानदार प्रदर्शन किया। वहीं नेस्टोरी ईरान कुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने गोल करते हुए ऑस्ट्रेलिया को एक यादगार जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया की टीम शुरुआत से ही तुर्की के डिफेंस पर हावी नजर आई। टीम ने एक के बाद एक हमले किए और आखिरकार टीम को पहली सफलता मैच के 27वें मिनट में मिली। इस गोल के साथ ऑस्ट्रेलिया को मैच में 1-0 की बढ़त मिल गई। 20 वर्षीय ईरान कुंडा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की ओर से गोल दागने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। पहले हाफ के अंत तक ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे रहा। मैच के 75वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया की बढ़त को मेटकॉफ ने 2 गुना कर दिया। मेटकॉफ के इस गोल से ऑस्ट्रेलिया की यादगार जीत पक्की हो गई। साल 2026 के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया की फीफा विश्व कप के पहले मैच में पहली जीत थी। वहीं 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को एक मैच में मोराको से कड़ी चुनौती मिली। मैच के 21वें मिनट में मोराको के हाथ पहली सफलता लगी। ब्राहिम डियास के शानदार थ्रू बॉल ने ब्राजील के डिफेंस को भेदने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि ब्राजील ने मोरक्को की इस बढ़त को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहने दिया। मैच के 32वें मिनट में ब्राजील ने स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। ब्रूनो गिमारेस के बेहतरीन पास पर विनिसियस जूनियर ने अपनी स्किल का शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल किया। ब्राजील के कोच कार्लो एंसेलोटी ने अंत में कुछ खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट करके मैदान पर उतारा, पर इसका भी कोई फायदा नहीं मिल सका। ये पहला मौका रहा जब विनिसियस जूनियर के गोल के बावजूद ब्राजील मैच को अपने नाम करने में असफल रहा। इससे पहले उन सभी 8 मुकाबलों में ब्राजील ने जीत दर्ज की थी जिसमें विनिसियस ने गोल दागा था। वहीं एक अन्य रोमांचक मुकाबले में स्कॉटलैंड ने हैती

0: को 100 से हरा कर 36 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया। स्कॉटलैंड की ओर से जॉन मैकगिन ने गोल करते हुए टीम को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। स्पोर्ट्स कैन के लिए शक्ति सिंह।
1: फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल का 78वां संस्करण आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। फिट इंडिया के एम्बेसडर जितेंद्र आडवाणी ने इस मुहिम को चलाए जाने के लिए फिट इंडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया।
2: मैं फिट इंडिया का बहुत आभार प्रकट करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये फिट इंडिया मूवमेंट को इनिशिएट किया है, जिसके माध्यम से इतने लोग जुड़े हैं। ऑलमोस्ट 10 साल से ये इनिशिएटिव चल रहा है और हर आदमी जो है अपने स्वस्थ और वेलनेस के प्रति जागरूक हो गया इस मुहिम के थ्रू। इस मुहिम को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हर जगह से, बिकॉज हर कोई जो आजकल अपने लाइफ स्टाइल की वजह से जो है फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, इस इनिशिएटिव के माध्यम से जुड़ के अब जागरूक हो गया है और अपने लिए टाइम निकाल रहा है फिटनेस के लिए।
1: और अब बात एथलेटिक्स की। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आज ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 32 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का ऐलान कर लिया। अंतिम सूची में 22 पुरुष और 10 महिला एथलेटिक्स शामिल हैं। सुनते हैं वैष्णवी की एक रिपोर्ट।
3: एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रमुख नामों में ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा को शामिल किया है। हालांकि उनका टीम में शामिल होना प्रतियोगिता से पहले चयन की शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगा। पुरुष जंप और थ्रो इवेंट्स में एम श्रीशंकर, तेजस्वी शंकर, तंजिंदर पाल सिंह तूर, प्रवीण चित्रवेल और रोहित यादव जैसे एथलीट्स शामिल है। ट्रैक पर गुरिंदरवीर सिंह, अनिमेश कुजूर और गुलवीर सिंह भारत की ओर से स्प्रिंट और लंबी दूरी की दौड़ में चुनौती पेश करेंगे। महिला वर्ग में पारुल चौधरी एंड्योरेंस इवेंट्स में मुख्य चेहरा होंगी, जबकि मनप्रीत कौर, सीमा और निधि रानी थ्रो इवेंट्स में भारत की उम्मीदों को आगे बढ़ाएंगी।
1: और चलते चलते श्रोताओं, आपको बता दें कि भारत ने 169 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिया है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप इस पे अपनी राय और सुझाव में स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी

0: चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: The world seeks trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: जो भारत का परिपेक्ष है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद

0: आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई।

0: हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट वन का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defence, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors,

0: एक प्रतिभाशाली कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं और आकाशवाणी की ए ग्रेड कलाकार हैं। वे अपनी आकर्षक और अभिव्यंजक शैली के लिए सुप्रसिद्ध हैं। ये प्रख्यात संगीतज्ञों के परिवार में पैदा हुए हैं। इन्होंने अपनी माँ श्रीमती जे चिद्रूपा लक्ष्मी जी की प्रेरणा से संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और बाद में विद्वान द्वारम सत्यनारायण राव और विद्वान अकेला मल्लिकार्जुन शर्मा जी के मार्गदर्शन में गायन में आगे बढ़े। श्री सूर्वारम प्रताप रेड्डी तेलुगु विश्वविद्यालय में एमए संगीत में स्वर्ण पदक हासिल करके अभी वही संगीत में शोध कर्नाटक संगीत और एक समर्पित अध्यापक बनकर उन्होंने कई विद्यार्थियों को संगीत प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया है। और आप ललित कलाओं को बढ़ावा देने वाली संप्रदाय जैसी लाभ निरपेक्ष संस्था में भी स्वच्छंद सेवारत हैं।
1: श्री जे एस श्रीराम इज अ वर्सटाइल कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड एन ए ग्रेड आर्टिस्ट विद ऑल इंडिया रेडियो। ही इज नोन फॉर हिज एक्सप्रेसिव एंड डायनामिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग। ही हेल्स फ्रॉम अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली। श्रीराम वॉज इनिशिएटेड इन टू म्यूजिक बाय हिज मदर श्रीमती जे चिद्रूप लक्ष्मी। Later, trained under Vidwan Dwaram Satyanarayan Rao and Laya exponent Vidwan Akella Mallikarjuna Sharma. He is a MA Music Gold Medalist from Sri Suravaram Prataparedi Telugu University, Hyderabad, where he is currently pursuing his PhD in music. Equally adept at Carnatic vocal concerts and Nama Sankirtanas, he performs at major festivals in India and abroad. As a dedicated teacher, he has trained many students to concert level. He also volunteers with Sampradaya, a non-profit organization promoting fine arts.
0: Shri J. Shri Ram apne gayan ka aarambh Valaji Peta Venkata Ramana Bhagwatar ki ek kriti se kar rahe hain, jo raag lalita tatha adi taal mein nibadh hai.

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to a composition of Shyama Shastri in the rag Purvi Kalyani set to Viloma Chapu Taal.

0: श्री जी, श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराजा की एक कृति से कर रहे हैं, जो राग शंकरावर्णम तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जे एस श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was तन्यावर्तनम played on मृदंगम by विद्वान पेरवली जयभास्कर and on घटम by श्री यम चंद्रकांत।
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में श्री जे एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसपी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाय श्री

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट एनईई

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद।
1: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
2: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
1: जी।
2: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
1: जी।
2: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
1: जी।
2: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया, जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया, चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लेवेंडर आया, अभी हाल ही में तीन चार या दो या तीन दिन का कैंप था मुंबई में
1: जी।
2: तो हमारे युवा लगभग 30, 40 या 50 लाख का लेवेंडर तेल फरोख्त करके आए हैं, तो एक नया एवेन्यू रोजगार का आ गया। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं क्वांटम की, तो मीडिया का भी उससे ताल्लुक है
1: जी,
2: डिफेंस का भी ताल्लुक है, और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, वो 3 साल में ही मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसे अब स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जब कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
1: जी,
2: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो किस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग, तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है। इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने एआई चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2000

0: 14 से पहले कुल मिलाकर के हमारे यहाँ सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में। आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइमलाइन। हमारे 95-97% जहां पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहां हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, AI ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइमलाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
1: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये मात्राएं किस तरह से दिखाती है कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है।
0: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है। द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपेंड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई

0: ना थोरियम, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है, ये मात्राएं किस तरह से दिखाती हैं कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है?
1: बहुत अच्छी बात कही। बल्कि मैंने उस दिन, जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ, तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी
0: जी
1: पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है। द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपेंड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से, गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए,
0: बिल्कुल
1: हमारे
0: जी
1: साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3-स्टेज प्रोग्राम दिया। जो 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी
0: जी
1: उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं,
0: जी
1: हाइड्रोजन ऑक्साइड,
0: जी
1: ये होता है D2O, ब्यूट्रोस ऑक्साइड। लेकिन उसके में लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 239 इस तरह से,
0: उसकी मात्रा भी सर कम है,
1: मात्रा भी कम है, और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम। तो होमी बाबा का ये तस्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। कैसे? उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के, जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
0: जी।
1: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
0: जी,
1: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी, और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में, जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया, और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है। तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे
0: जी,
1: पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233, जो एनरिच्ड नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही, फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा, जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था। और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गया, यहाँ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया, और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने इसकी
0: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया, न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोला है
0: जी।
1: तो इसके लिए भी, जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी हैं। अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में, जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाएं, एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का, एंड देन मैच्योर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे हमारा RDI फंड भी है, 50% सरकार की ओर से मिलता है
0: जी,
1: बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद, बड़े हाउसेस तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड, रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
0: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके नेटवर्क को लेकर। कहां तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया। क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसी उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
1: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में, और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग

0: इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है, वो ये कि हम उन चंद एक चार पांच देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे जो अमरीका में 1950 के दशक में, यहाँ पे 1970 के दशक में पहुंचे या सीखे। अब हम बराबर चल रहे हैं तो क्वांटम में। और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया, क्योंकि उसके 4 वर्टिकल्स हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड, लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली। यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर ले और हम उससे आगे बढ़ जाए।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं दो चार हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता, क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा मिलेगा?
0: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रीसाइक्लिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हट करके सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा। और उसमें अभी हमने पहल कर ली है। और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है
1: जी।
0: हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं, हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नी वेन पिक डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए, कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए ये उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
1: जी।
0: और उसमें हम अलग अलग चरणों में, उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज हैं उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
1: जी।
0: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो बायो E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जब पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि साहब ये इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसके इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जा रहा था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटा, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। यहाँ पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
1: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाएगी?
0: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शियलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
1: सर ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं।
0: अब देखिए आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी, आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन US डॉलर और इतनी

0: तेज रफ्तार से बढ़ रहा है
1: जी।
0: कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टुवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए। और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले ही कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट। लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया है, उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग, उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है। हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो है ही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउसहोल्ड, एवरी इंडियन हाउसहोल्ड टुडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर। तो ये सारा वॉरफेयर, उससे हमारी क्षमताएं। और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए लगभग 2,26,000 से अधिक
1: जी।
0: और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 हैं दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, बाहर जाके शोध करते थे। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यहीं शोध किया, यहीं पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए। और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है कि अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें।
0: नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी,
0: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहाँ हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिट्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहाँ हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे थे, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे, यहाँ मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है, एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं, और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है। इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके। और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बड़ी है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
0: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है, इस सरकार ने

0: 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे चार अलग अलग हैं, AI कंप्यूटिंग, AI डेटा, AI इनोवेशन सेंटर्स, AI फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
1: जी,
0: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है, 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं। जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुद्र में जब टाइड आता है खतरे का बायस तो ही है, लेकिन साथ में जैसे कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अकंपनीड विद अ वर्च्यू, उससे भी बिजली याद होती है, तो समुद्र से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज, और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा वहाँ 100 गीगावाट तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी, जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगा।
1: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
0: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
1: जी।
0: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है, भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा, अगर हम उसको तराश सके। हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरिकल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरिकल्चर, तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर जिनको पूरी तरह से एक्सप्लॉयट नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हमें 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: We now bring you an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Padmanabhan, journalist.
4: On 26th May 2014, the National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office. It marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years through conversations with policymakers, economists, entrepreneurs and investors. It will take stock of a decade that sought to reimagine India. I am your host, Anil Padmanabhan. Much of the conversation around development focuses on policies, budgets and reforms. But the real test of governance is the ability of institutions to deliver outcomes at scale. This, in turn, shines the light on state capacity. In the last 12 years, India has banked 50 crore people, conducted seamless